0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: तमाते पांडव वसुन कुमा वसुन कालिका आउ गोरच गरुण रदाना बहरु नागमा रावणासिका संचल भई घुमनी दस इन्द्रिय तिम्रा भजनमा भोलोस सारा।

जनमलाया जाय रे लाल दोरारा ओ मेरा घर ताई कैसा क्यों दुख बरदाए ऐसा क्यों ओ मेरा घर ताई कैसा क्यों दुख बरदाए ऐसा क्यों दीना दीना जिंदा की सारा करने वायरस दीना दीना जिंदा की सारा करने वायरस हरे राम बचो हरे राम मुखले बचो हरे राम आसे घर चुकाम मुखले बचो हरे राम आसे घर चुकाम।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

थप जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापन का लागि सम्पर्क 9852445779 9849924909 9844994913 9141699945 9844446550 आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिल्ला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।

मोबाइल लड़े हो तो गा खोला बंदे जो आप दुगाए छोड़े दिन जो संजय दुगा दिन जो यार मोबाइल लड़े दिन जो दुनिया से हर मोबाइल

0: नमस्कार
1: रेडियो सहिल सामुदायिक एफएम बैंड में थोपलो सात मेगा हर्ट्ज बाट म बद्री प्रसाद सागबाट आज विक्रम सम्मत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन 2026 अक्टोबर 2 तारीख आश्विन 16 गते शुक्रवार खट्टी तिथि
0: अब स्तुति गरौं
2: आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी

नगाड़ेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।